अब किसी ने कहा है कि यार अपनों के साथ ही तो लड़ाइयाँ होती है। वैसे बात तो सही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और नोटिस किया है कभी कि अक्सर उन्हीं लोगों से हम ज्यादा लड़ते हैं ना जो एक्चुअली हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, अपने होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हर आर्ग्यूमेंट में हमें एक विनर चाहिए होता है। नहीं, मेरी बात सही है। अरे भाई, रिलेशनशिप है, डिबेट कॉम्पिटिशन थोड़ी है ना। मैं एक बहुत अच्छी लाइन ना मैंने पढ़ी जो कहती है कि अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज नेवर मी अगेंस्ट यू, है ना, इट्स ऑलवेज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ ना हस्बैंड वाइफ या कपल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड, किसी के साथ भी हो सकती है। और कभी कभी सामने वाले को हराने से ज्यादा जरूरी होता है उसको समझना। अटैक करने के बजाय बात करो, अज्यूम करने के बजाय पूछ लो, और हर डिसएग्रीमेंट पे डिस्टेंस क्रिएट करने के बजाय थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश कर लो। बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है बाबू मशाए, कभी कभी इंसान को जीतना भी ज्यादा जरूरी होता है। बस इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, सिंपली आफरीन है, माइक से दिल तक बातें लेकर आती है। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन पर एक क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासे थे, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: रेडियो
4: मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
7: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, where she is absolutely reading the mind। अच्छा, interesting बात ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो magician है, but नहीं, वो अपने आप को एक mentalist कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ tricks दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि observation, psychology, body language और human behavior को इतनी deeply ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है भाई, क्या, how is it even possible? बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
1: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

Well, now imagine कि आपकी फ्लाइट में स्टॉप ओवर है और बोर्डिंग पास के साथ साथ आपको फॉर्मूला वन वीकेंड भी अनलॉक हो जाए. Now that's what I called a layover upgrade. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ऐसा ही अपग्रेड कतर एयरवेज लेकर आया है. कतर एयरवेज हॉलीडेज ने 2026 कतर ग्रैंड प्री के लिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. अगर आप एलिजिबल कतर स्टॉप ओवर पैकेज बुक करते हैं विद ट्रैवल डेट्स 27 to 29 November, तो इन पैकेज में तीन दिन जो होते हैं, 3 days T16 ग्रैंड स्टैंड टिकट पर पर्सन इंक्लूडेड होगा. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग. और यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इट इज द फर्स्ट ऑफ दियर कतर स्टॉप ओवर प्रोग्राम. मतलब दोहा अब सिर्फ कनेक्टिंग एयरपोर्ट ही नहीं, डेस्टिनेशन बन रहा है. और T16 कोई रैंडम सीट भी नहीं है. इट ओवरलुक्स द फाइनल सेक्टर एंड टर्न 16, जहां कार्स हाई स्पीड से ब्रेक करके फाइनल टर्न लेती है बिफोर हिटिंग द मेन स्ट्रेट. प्लस फैन विलेज और पोस्ट रेस F1 कॉन्सर्ट्स का एक्सेस भी टिकट में इंक्लूडेड है. सो बेसिकली फ्लाइट पकड़ी थी कहीं और जाने के लिए और कतर ने बोला पहले थोड़ा फॉर्मूला वन देख के जाओ ना. दैट्स अ स्मार्ट स्टॉप ओवर टूरिज्म विद सम सीरियस हॉर्स पावर. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक. और अगर कोई उस डेट के अराउंड ट्रैवल कर रहा है कहीं, आपके दोस्त यार कोई, सो डू टेल देम दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. ठीक है ना, बने रहेगा हमारे साथ. और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bollywood, Bordar.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे, तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordar.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: आपको गाड़ियाँ तो हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन मेड इन कतर गाड़ी कभी देखी है? ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत बनने वाली है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में ये खबर है।
1: क्या खबर कतर?
0: कतर इज ऑफिशियली गेयरिंग अप फॉर इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। ये बहुत ही बड़ी खबर है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हो रहा है दैट कतर थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन कतर बेस्ड GTA इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड UK बेस्ड व्हाट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। अब व्हाट का नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, मैंने भी ऑनेस्टली पहली बार ही सुना है। आई एम नॉट इन टू कार्स मच, बट इंटरेस्टिंगली दिस British company specializes in designing and engineering low volume electric passenger and commercial vehicles using its own lightweight EV technology called the PACES platform, and that technology recently won the innovation award at the Auto Car Awards 2026. aur Qatar ke liye jo EVs banegi wo specially Gulf ki extreme heat aur driving conditions ko dhyan mein rakhkar engineer ki jayegi. Design aur engineering UK mein hoti hai, hogi, but manufacturing hogi right here in Doha under the Made in Qatar brand. This is absolutely huge. Well, reports also suggest production could begin in early 2028. मतलब ये कोई बहुत future की बात भी नहीं है. This is absolutely near future. Well, initially ये passenger car बनाएंगी और उसके बाद में delivery van की तरफ भी ये जाएगे. So कल तक Made in Qatar बोलते वक्त जो products दिमाग में आते थे, उस list में very soon electric cars भी हो सकती है. आप सुन रहे हो आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टेल मी, वुड यू बी द पर्सन टू बाय दीज इलेक्ट्रिक कार? आई थिंक सो, आई वुड श्योरली गो फॉर देम। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
2: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट शायद अब कतर वालों का फुटबॉल से बास्केटबॉल पर शिफ्ट होने वाला है जल्दी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और 27 अगस्त को कतर की नेशनल बास्केटबॉल टीम फेस करने वाली है चाइना को और वेन्यू है अल जनूब अरेना। टिप ऑफ 7 PM और बेस्ट पार्ट एंट्री इज फ्री। लेकिन मेरे लिए मैच से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है इसका वेन्यू। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में इसी अल जनूब ने 7 फुटबॉल मैचेस होस्ट किए थे। अब इसी 44,000 प्लस कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म करके अराउंड 8,200 सीट एनक्लोज्ड बास्केटबॉल अरेना बनाया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू फीबा, दिस विल मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टेडियम टू होस्ट अ गेम इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। अब दैट इज द मैजिक ऑफ कतर आई वुड से। एंड आई थिंक सो दिस इज नॉट जस्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू, इट्स री इन्वेंटिंग वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। दैट स्मार्ट स्पोर्टिंग लेगेसी, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम सिर्फ पोस्ट कार्ड नहीं बना, उसको एक कंप्लीटली न्यू स्पोर्टिंग लाइफ मिल रही है। और 27 अगस्त की डेट भी राधा पोएटिक है, बिकॉज एग्जैक्टली 1 ईयर लेट 27 अगस्त 2027 दोहा में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टिप ऑफ करेगा। इन फैक्ट 32 टीम्स और 92 गेम्स ऑल इन वन सिटी। सो दिस 27 अगस्त 7 PM कतर वर्सेस चाइना अल जनूब अरेना। फुटबॉल का घर, बास्केटबॉल का कोर्ट। कतर क्लियरली बिलीव्स वेन्यूज शुड हैव अ सेकंड इनिंग्स टू। माइक से दिल तक आप शीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabala, buscabala, sacabala. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था, तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: यार मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
4: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और

आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है. वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल. बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट. सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में. तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा. माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

देखिए साल 2027 आपको दूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने हज की नियत की है तो ये इतना भी दूर नहीं है। क्योंकि हमारे कतर में तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और ये न्यूज पढ़ के मुझे थोड़ा सा अपना हज प्रेप टाइम याद आ गया है, बिकॉज इसी साल 2026 में आई वॉज ऑन दिस ब्यूटिफुल सीक्रेट जर्नी माई सेल्फ। तो अब आई नो एग्जैक्टली हाउ दिस फीलिंग इज जब नियत हो चुकी है और धीरे धीरे प्रेपरेशन जो है हमारी स्टार्ट होती है। जो भी हज 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह आप सबका सफर आसान करे और हज कबूल फरमाए। लेकिन अब काम की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो PHCC ने हज 2027 के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। और आपने रजिस्टर्ड PHCC जो भी आपके रजिस्टर्ड है वहां पर जाकर आप फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट जा सकते हैं। वेल, नॉन कतरी रेजिडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट ये है दैट 45 ईयर्स और अबव कतर में एटलीस्ट 15 ईयर्स रेजिडेंसी और पहले हज परफॉर्म ना किया हो या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीजें शामिल है। सो नियत कर ली है तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लीजिए, क्योंकि हज की जर्नी दिल से शुरू होती है बट प्रिपरेशन जो है ये सारी चीजों से भी शुरू होती है, जैसे पेपर वर्क होता है एंड सो मेनी मोर थिंग्स। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन विच शी, इट्स हॉट।

0: हेल्थ एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्च लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल, अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल। सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल, 'cause it's time for Mirchi back to school. Because it's time for Mirchi back to school.
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
3: 89.6, 89.6.
4: It's hot.

देखो जनरली तो हम सुकून का सिनोनिम कतर कहते हैं, लेकिन कन्वीनियंस का सिनोनिम भी कतर है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और देखिए कतर को बखूबी पता है कि किस तरह से अपने रेसिडेंट्स और सिटीजन्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया जाए। वैसे ही यहाँ पर हमारे कतर में दोहा मेट्रो और लुसेल ट्रैम कितने सारे लोग यूज करते हैं, और वो लोगों के लिए जो एन खालिद और अल सनीम की तरफ रहते हैं। तो बस ये गुड न्यूज बस उन्हीं के लिए कि एक सर्विस अपडेट हुई है अनाउंसिंग अ न्यू मेट्रो लिंक रूट M304। आई रिपीट, इट्स M304। ये जो है इट विल ऑपरेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स सिटी एग्जिट 5 स्टेशन ऑन द गोल्ड लाइन ऑफ द दोहा मेट्रो, और ये जाएगी एन खालिद और अल सनीम एरियाज में। तो वो एरिया में जो लोग रहते हैं जिनके पास मेट्रो में जाने के लिए उन्हें टैक्सी करनी पड़ती है और फिर कहीं जाते हैं, देन दिस मेट्रो लिंक, ये जो बस है M304, ये आपको सीधा लेकर जाएगी। अब ये जो न्यू रूट है इट हैज अ टोटल ऑफ 30 स्टॉप्स। तो आई एम श्योर आपके घर के करीब कहीं ना कहीं वहां पर जरूर होगा, और आपके लिए भी अब मेट्रो और ट्रैम यूज करना उतना ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट इट ऑन मशीन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नंदीश संधु टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून
4: अपनी आंखों में खुद ही खो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: देखिए दोस्तों, आजकल AI से हम सबका एक ही रिलेशनशिप है, काम भी उसी से करवा रहे हैं और डर भी उसी से रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या, मतलब कहीं जाकर आगे हमारा ये काम ना खा ले। वैसे कतर के लिए AI की स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को।
1: क्या खबर कतर?
0: और खबर ऐसे है कि वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट असेसमेंट में कतर को सिंगापुर, स्वीडन और UAE जैसे इकोनॉमीज के साथ मेंशन किया गया है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द फाउंडेशंस नीडेड टू बेनिफिट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ ये नहीं है कि कतर AI में आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड बैंक के फ्रेमवर्क को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो AI रेडी होने के लिए सिर्फ ChatGPT यूज करना इनफ नहीं होता है। बस यू नीड द 4 C's, कनेक्टिविटी, कंप्यूट, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉम्पिटेंसी। मतलब स्ट्रॉन्ग डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सीरियस कंप्यूटिंग पावर, रिलेवेंट डेटा और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल विद द स्किल्स टू एक्चुअली यूज इट। एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव मेरा ये भी है दैट वर्ल्ड बैंक लिटरली डिस्क्राइब्स कंप्यूट एज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द AI एरा। सो कतर का नाम इस कॉन्वर्सेशन में आना बेसिकली सिग्नल समथिंग बिगर। AI इज नो लॉन्गर जस्ट अ टेक स्टोरी, इट्स बिकमिंग एन इकोनॉमिक स्टोरी। और हम कतर रेसिडेंट्स के लिए टेक अवे सिंपल है दैट AI से कंपीट करने की टेंशन छोड़ो, AI के साथ कॉम्पिटेंट होना स्टार्ट करो। बिकॉज फ्यूचर में शायद सवाल ये नहीं होगा दैट डू यू नो AI, सवाल ये होगा कि हाउ वेल डू यू नो टू यूज इट। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट इट ऑन बिट शीट, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabala. Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirci, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है
4: क्या? सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये क्या मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार,
4: अरे यार
3: ढूंढ रहा पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना।
4: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
4: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: देखिए आज की मेरी शायरी ना आपको वो पहला पहला प्यार और कॉलेज के दिन जरूर याद दिलाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ और वक्त हो चला है कि आफरीन अपनी डायरी खोले और उसमें से कोई अल्फाज आपको सुनाए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, नजर चाहती है दीदार करना, नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं पागल दिल का आलम, क्या बताऊं पागल दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। वो दिन याद आ गया ना कि एक झलक, मतलब एक झलक ही लिटरली आके स्टमक में बटरफ्लाइज लेकर आते थे, एंड दैट वाज जस्ट इनफ। गुड ओल्ड डेज। मिर्ची पर आप सुन रहे हो माइक से दिल तक आफरीन को। बने रहिएगा मेरे साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, where she is absolutely reading the mind. अच्छा, interesting बात ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो magician है, but नहीं, वो अपने आप को एक mentalist कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ tricks दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि observation, psychology, body language और human behavior को इतनी deeply ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है भाई, क्या, how is it even possible? बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो गाड़ियाँ तो हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन मेड इन कतर गाड़ी कभी देखी है? ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत बनने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में ये खबर है।
1: क्या खबर कतर?
0: That Qatar is officially gearing up for its first dedicated electric vehicle manufacturing plant. Yes, you've heard it right. ये बहुत ही बड़ी खबर है, for the first time in the country हो रहा है that Qatar through a partnership between Qatar based GTA International Investment and UK based What Electric Vehicle Company. अब What का नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, मैंने भी honestly पहली बार ही सुना है। I am not into cars much, but interestingly this British company specializes in designing and engineering low-volume electric passenger and commercial vehicles using its own lightweight EV technology called the PACES platform. And that technology recently won the Innovation Award at the Auto Car Awards 2026. और कतर के लिए जो EVs बनेगी वो specially Gulf की extreme heat और driving conditions को ध्यान में रखकर engineer की जाएगी। Design और engineering UK में होती है, होगी, but manufacturing होगी right here in Doha under the Made in Qatar brand. This is absolutely huge. Well, reports also suggest production could begin in early 2028. मतलब ये कोई बहुत future की बात भी नहीं है. This is absolutely near future. Well, initially ये passenger car बनाएंगी और उसके बाद में delivery van की तरफ भी ये जाएंगे. So कल तक Made in Qatar बोलते वक्त जो products दिमाग में आते थे उस list में very soon electric cars भी हो सकती है। आप सुन रहे हो आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टेल मी वुड यू बी द पर्सन टू बाय दीज इलेक्ट्रिक कार? आई थिंक सो, आई वुड श्योरली गो फॉर देम। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है,
2: है?
3: मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन वरदाना आके पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
3: ये क्या सवाल है?
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
5: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
1: Visit Suzuki Qatar showroom by Taseer Motors, Airport Road, Doha.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: Hi there, what's up? Tell me.
2: खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है। क्या करूँ यार, थक गया हूँ।
3: ओ मैन, इट्स सो सिंपल यार, घड़ी देखना बंद कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैंटास्टिक।
4: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

वाओ में कहीं। अरे भाई उड़ क्यों रही हूँ मैं, आपको बता दूँ भाई, उड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के लिए बस एक हफ्ता रह गया और एक हफ्ते बाद बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं आराम से देखूंगी टीवी और एंजॉय करूंगी अपना मी टाइम, है ना भाई। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ ईशा। जैसे कि आप जानते हैं मुझे, मैं वीकेंड का हाल बताने आ चुकी हूँ आपके साथ, जहां मैं बातें होंगी सारे शोज की, इवेंट्स की, एग्जीबिशंस की, सब कुछ ऑन माय शो। आपको क्या करना है, बस ट्यून इन रखना है मुझे, ताकि आपको पता लगे कि आगे कतर में क्या हो रहा है, कहां जा सकते, क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 में शिवान, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: नहीं दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहा है।
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
2: क्या?
3: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा हैं बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं।
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: Okay.
3: I love you.
2: I love you too.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

खामोश, क्या आप चेज मार्शल रूबल्स का यार राइडर को जानते हैं? इट्स ओके अगर आप नहीं भी जानते, तो मैं आपको बता दूं ये कैरेक्टर्स हैं जो पा पेट्रोल से रिलेटेड हैं और ये पा पेट्रोल शो आपके कतर में होने जा रहा है। जी हाँ, शुरू हो चुका है, 20th से ये शुरू हो चुका है, 29th अगस्त तक ही है, 5 बजे से लेके 8 बजे तक मॉल ऑफ कतर में, और इस स्टेज में ये हो रहा है जहाँ पे फैमिलीज एंजॉय कर सकती हैं ये फन फिल्ड एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस। इसमें आपको देखने के मिलेंगे लाइव शोज डेली। जो है पाव पेट्रोल को बहुत पसंद करते हैं, तो बस आप अगर बच्चे वाले हैं तो जाइए, बच्चे वाले नहीं भी हैं तब भी जाइए, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा आपको मीट एंड ग्रीट टोटली फ्री मिलेगा, एंट्रेंस टोटली फ्री है, और देखिए ये 29 तक है, तो भाई मान लो कि जाते जाते भी एक शो बच्चों के लिए आ गया है, तो बस मिस नहीं करना है, जाइए इस वीकेंड और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड सॉल्ट।

So, जो एक ऐसी इवनिंग है जहाँ पे मैजिक सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर भी चल रहा है। Yes, you heard that right. Suhani Shah is coming to Qatar live for the very first time on 25th September. So, bhai, save your dates because Suhani Shah is known for her incredible mind reading, magic or psychology based performances. Aur ab aap apne इस एक्सपीरियंस को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा उनको मैजिक करते हुए, माइंड रीड करते हुए बेसिकली। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपकी बारी है उनको लाइव देखने की कतर में। तो अगर आप भी इस मैजिकल इवनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने करना क्या, फ़ोन उठाना है फटाफट से और अपनी टिकट्स बुक करवा देनी है और अपने फ्रेंड्स की भी करवा देनी है स्नूनू ऐप के जरिए। जी हाँ, जहाँ पे टिकट्स ऑनलाइन हो चुकी हैं आप बुक करवा सकते हैं। 25th September को मिलते हैं सुहानी शाह के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस को लेके। स्टेडियम विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: 6 decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: सोचो समर की एक ब्यूटीफुल सी इवनिंग है और आप अपने फेवरेट लोगों के साथ हो और मूड एकदम चिल है और तभी मिल जाए एक अमेजिंग सा सरप्राइज, तो भाई क्या ही कहने। सरप्राइजेस मतलब एब्सोल्यूट बारबेक्यू का वीकडेज का स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है एंड जहां पे संडे मंडे एंड ट्यूसडेज आप एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल डाइनिंग एक्सपीरियंस के साथ, एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ, क्योंकि लंच सिर्फ और सिर्फ 54 कतरी रियाल में एंड डिनर इज 74 कतरी रियाल। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर 2026 तक ही है, तो समर को बोरिंग क्यों बनाना है भाई, जब आपके पास मौका है एबी इसके साथ एंजॉय करने का। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाओ और टेबल बुक कराओ और इवनिंग्स को बनाओ डिलीशियस, मेमोरेबल और फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो बुक नाउ एंड लेट द समर बिगिन एट एबीज, यानी कि एब्सोल्यूट बारबेक्यू। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.6 89.6
1: It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी.
2: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरे ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

कभी नोटिस किया है कि बचपन की ना सबसे खूबसूरत यादें वही होती थी जहाँ पे हमने सिर्फ खेला नहीं कुछ नया सीखा भी था। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे। जब समर कैंप होते थे ना तो उसमें एक एक पीरियड हर चीज का होता था। पहले वॉलीबॉल खेलने का टाइम होता था तब हम वॉलीबॉल खेलते थे खूब सारा एंड देन थोड़ी देर बाद ही ना साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता था जिसमें अनियन पील करके उसमें आयोडीन का लिक्विड डाल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। उसके अलावा फिर अपने इमेजिनेशन के साथ नए रोबोट डिजाइन करते थे, कुछ क्राफ्ट का करते थे और शाम होते होते ना दोस्तों के साथ हंसी और यादें भी बना रहे होते थे। तो ये साइमल्टेनियसली चलता था। बस अगर आप चाहते कि आपके बच्चे भी नया स्किल कोई जाने, कोई नई एक्टिविटी सीखे, तो कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी इस समर लेके आया है आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, क्लासेस, एक्टिविटीज, ये एंड ऑफ अगस्त तक रहेगा। और ऐसे कैंप्स में ना बच्चे अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं कि व्हाट दे लाइक व्हाट दे डिसलाइक। तो बस अगर आप भी कहीं नहीं गए हैं और कतर में ही हैं तो अपने बच्चों को आज ही ज्वाइन करवाइए और स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूँ?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
1: वाली बातें कर रहा क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
5: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

कर हर मैदान फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी। ये बहुत खूबसूरत मूवी और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसे लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है और वो आपको कुछ बातें करता है आपसे और आपको ऑब्जर्व करता है और फिर अचानक बोलता है कि आपके माइंड में इस समय जो नाम चल रहा है वो है ये। एंड आप सोचोगे कि वेट, इसने मेरा माइंड रीड कैसे कर लिया भाई? बस यही से शुरू होता है मेंटलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया। मेंटलिज्म बेसिकली एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, मेमोरी और सजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं और इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ना, वो है सुहानी शाह का। जी हाँ, सुहानी शाह जो आ रही हैं आपकी कतर में, लाइव आप उनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए 25th of September को। मार्क योर डेट्स बिकॉज ये मौका ना खोने वाला नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह ने बहुत कम उम्र में ना मैजिक की दुनिया में ना कदम रखा और धीरे धीरे मैजिक से आगे बढ़कर मेंटलिज्म की और अपनी पहचान बनाई है। उनकी परफॉर्मेंसेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि हमें सिर्फ सरप्राइज नहीं करती है वो, बल्कि हमें अपने ही माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है यार। वाकई में अगली बार अगर कोई बोले ना आई कैन रीड योर माइंड, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दिमाग में कैसे घुस गया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैंने अपने माइंड के बारे में ऐसा क्या रिवील कर दिया जो मुझे खुद पता ही नहीं चला। देखिए, सोचना समझने की बात है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

देखिए ये घड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि समय खत्म हो चुका है ईशा, अब तेरे जाने का समय आ चुका है। और इसी बात पे ना थोड़ी सी लाइनें आपको सुना दूं। मुलाकात चाहे छोटी सी हो, मुलाकात चाहे छोटी सी हो, यादें रह जाती हैं, बातें खत्म हो जाएं पर स्माइल्स रह जाती हैं। तो आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीकेंड वीकेंड वाइब्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मिर्ची ऑन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग। मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: हाँ जी, तो रिविजन मोड एक बार फिर से ऑन करें।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड साथ ही आपको सारी अच्छी बातें एक बार फिर से याद दिला दूँ, वो मेमोरीज के खूबसूरत से खजाने को आपके सामने खोल दूँ। मैंने सोचा बस यही अभियान आपकी और मेरी जिंदगी में मैं चलाई लूँ। सैटरडे आते ही अगर कोई सिलसिला शुरू होता है तो वो है बेस्ट ऑफ द वीक, यानी कि पूरे हफ्ते पर जो खास बातें मैंने आपके बीच पहुँचाई थी, पेश की थी, उनमें से चुनिंदा कुछ कोहिनूर जो है दोबारा मैं आपके बीच पेश करती हूँ। तो चलिए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं इस अगले पावर पैक गजब से गाने के साथ। मीनवाइल ऑल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La fie doar la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी चिल्लाई तो फिर
3: बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: देखो एक बात मैं साफ साफ कह दूं कि बातें जो हैं वो बहुत हो गई, अब ना थोड़े सीरियस एक्शन की बारी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: और हाँ, एक बार जो मैंने कह दिया सो बस कह दिया। अरे भाई, एक बार फिर से जब कतर वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करे तो सीरियस एक्शन ना हो तो फिर क्या ही हो। एंड अब की बार बारी है अंडर 17 वॉलीबॉल बॉयज वर्ल्ड चैंपियनशिप की। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 19 अगस्त को शुरू हो रही है। महासंग्राम चलेगा 29 अगस्त तक एट अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब एंड लेडीज स्पोर्ट्स हॉल, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड अबाउट इट। भाई वो सारे मेगा इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स जिनके बारे में हम कभी अखबारों में पढ़ा करते थे, टेलीविजन स्क्रीन में देखा करते थे, आज के डेट में ठीक वो हमारी आंखों के सामने। वेल, इतना कहना चाहूंगी इस टूर्नामेंट में जरूर जाएं, एंट्री जो है पूरी तरह से फ्री है, एंड अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएं। देखिए एक पंथ दो काज होगा, बच्चे जो हैं जेन्युइनली रेजिलियंस किसे कहते हैं, हार्डवर्क किसे कहते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे, जुनून के बारे में सीखेंगे, एंड आप जो है कह पाएंगे बड़े आराम से, अरे ये तो वही बच्चे हैं जो हमारी आंखों के सामने खेल कूद के बड़े हुए, क्या पता कल के दिन ओलंपिक्स पहुंच जाए, किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंच जाए, हम ये क्रेडिट तो ले पाएंगे। जस्ट से स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: दिल।
1: यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का जो राज है ना कहीं इस एक शब्द में छुपा हुआ है।
2: मिर्ची अंशु
1: और जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एंड ये सबसे खूबसूरत लव्स है कोशिश। पता है क्या, हम ना जिंदगी में हार अक्सर तब नहीं मानते जब हम हार जाते हैं, हम हार तब मानते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। यार एक इंटरव्यू नहीं निकला, शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, ये बिजनेस भी नहीं चला यार, शायद मुझसे हो ही नहीं सकता, ये ऑडिशन फिर से खराब हो गया यार, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, है ना। कितना आसान है हार मान लेना। या लेकिन बात इतनी है ना कि अगर पहली कोशिश में ही सारे के सारे फैसले होने लगे तो दूसरी कोशिश नामक ये टर्म दुनिया में आया तो आया क्यों? कोशिश की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि हर बार जरूरी नहीं कि वो आपको आपकी मंजिल तक बस ले जाए, कभी वो आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब लाती है, कभी कुछ सिखा जाती है तो कभी कुछ बदल जाती है और कभी आपको पहले से बेहतर बना जाती है। तो अगर कोई काम आज ना हो ना तो कल परसों करते रहना, लेकिन तब तक ना छोड़ना जब तक तुम जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, क्योंकि किसी ने कहा है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बताओ ये किसने कहा है? 5000 1896 waiting for your messages, Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। इसका जवाब WhatsApp में ही मिलेगा। Meanwhile, stay tuned to मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नंदीश संधु टीवी एक्टर,
2: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
3: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
2: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
3: जुनून के। आंखों में खुली हो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के।
1: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच की ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: देखो बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सीधा इस दरबार से बुलावा आता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे अल्लाह ऊपर वाला तुम्हें अपने दरबार में बुलाए, तुमसे खुद मुलाकात करे, अपने घर पे बुलाए। सोचो जिंदगी में इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है? तो बहुत सारे लोगों के अरमान जो हैं इस साल जरूर पूरे हुए, कईयों के अरमान जो हैं आने वाले साल में भी पूरे होंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हज 2027। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपने भी इसकी तैयारी कर ली है, तो आपकी सेहत फिट है, पूरी तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास है, या आपको अवेल करने की तैयारी कर चुका है प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन यानी कि PHCC। बिल्कुल एप्लीकेंट्स जो हैं जिन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो किसी भी फैमिली मेडिसिन क्लिनिक जो कि PHCC से अफिलिएटेड है वहाँ पर थ्रू आउट द वीक विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट बिना किसी अपॉइंटमेंट के भी आप विजिट कर सकते हैं। एंड बेसिक टेस्ट के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। एंड एक बार शारीरिक तौर से आप पूरे मजबूत हैं, उसके बाद तो आप तैयारी शुरू करेगा। अल्लाह का बुलावा आया है, उस दरबार में जाएंगे, झूमते नाचते गाते। एंड बस यही दुआ है कि आपकी जो भी मुरादें हों वो ज़रूर पूरी हों। चलिए जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: भाई मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ, घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा, अब क्या करूँ भाई मैं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: नहीं, ये बात तो तुमने सुनी है ना कि बच्चे जो हैं बोलने से ज्यादा देखकर सीखते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: नहीं मतलब ये ज्ञान तुमने अपने बच्चों को कितनी बार दिया होगा कि बेटा सुनो, काम जो है ना ये कभी टालना नहीं, प्रोकेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना है। जो काम तुमको कल करना है वो आज करो, एंड आज करना है तो अब करो। हर दिन हम ये भाषण जरूर देते हैं लेकिन ना अपनी जिंदगी में हम जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नहीं सोच रहे हो ना, अरे ठीक है बहुत टाइम है, सुहानी शाह लाइव इन कतर 25th of September को होने वाला है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में, इसकी टिकट अभी क्या यार, बाद में बुक कर लेंगे। देखते देखते वो कल आएगा, तुम्हें लगेगा कोई नहीं जी आज कर लेंगे, फिर लगेगा कोई नहीं शाम तक तो ऑफर भी खत्म हो गया है, अब करें तो क्या करें। इसीलिए कह रही हूँ इससे पहले कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट खत्म हो, फिजिबिलिटी पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, जाओ और अपनी टिकट्स अभी के अभी सिक्योर करके आओ। हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, चाहे मैं नूनू सिटी की बात करूँ, क्यू टिकट्स की बात करूँ, अर्ली बर्ड डिस्काउंट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपकी जिंदगी में आया है। 20% तक का ऑफर है अक्रॉस ऑल टिकट कैटेगरीज, इनफैक्ट 160 रियाल्स में 2 टिकट्स भी मिल रही हैं। सो काल करे तो आज कर, आज करे सो अब, अभी अभी बुक करो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ देश मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: अजब लगे। जब तक एक जुड़ी धनिये के साथ हम दो मिर्ची मुफ्त में ना लाएं, तब तक धनिये लाने की खुशी हो तो कैसे हो।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो यार, बात इतनी है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, ये बड़ा कमाल है। आप और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम शॉपिंग पे निकलते हैं तो जो सामान खरीदने गए थे उसे खरीदने की खुशी उतनी नहीं होती जितनी कि उसके साथ मिले हुए मुफ्त में किसी दूसरे आइटम की होती है। इनफैक्ट मेरे घर वाले तो बड़े कमाल थे। एक बार एक दुकान गए जूता खरीदने के लिए। भाई साहब, मेरी दादी ने दुकानदार से कहा, भैया जूते तो मैंने ले लिए, अब एक काम करें, सॉक्स जो है आप जरा मुफ्त में दे दें। पर इतना बता दूं, अगर आपके अंदर भी ये कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट वाला कीड़ा है तो आपकी जिंदगी में सैटिस्फेक्शन जो है अब चरम परम सीमा में आने ही वाला है। वाल अगर आप एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट हैं जो बहुत सारे मैचेस, एंटरटेनिंग इवेंट्स देखने जाते हैं, तो इतना समझ जाएं, कतर ने लॉन्च किया है अपना नया स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हयो, HAYYOH। एंड इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कोई की काम करना है, जो भी कोई एलिजिबल स्पोर्टिंग इवेंट है उसके टिकट्स खरीदना है, परचेज करना है, अटेंड करना है। एंड अगर आप ऐसा करते हैं, इन दैट केस आप पॉइंट्स अर्न करेंगे एंड मेंबरशिप टियर में आप ग्रेजुअली ऊपर बढ़ते जाएंगे एंड फिर उन पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जिसके चलते आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स एंड एक्सपीरियंसेस जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जरिए। बढ़िया है जी, मतलब एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ में अब पॉइंट वाला सिस्टम यहां पर भी आ गया है। तो भैया आप और हम अगला मैच देखने तो अब जरूर जा रहे हैं, ये बात तो तय हो गई। रजिस्ट्रेशन जो है कतर के रेसिडेंट्स एंड सिटीजंस के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो जाइए हयो प्लेटफॉर्म को अपने फोन पर शामिल कर ही लीजिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। जी, मतलब एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ में अब पॉइंट वाला सिस्टम यहां पर भी आ गया है। तो भैया आप और हम अगला मैच देखने तो अब जरूर जा रहे हैं, ये बात तो तय हो गई। रजिस्ट्रेशन जो है कतर के रेसिडेंट्स एंड सिटीजंस के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो जाइए हयो प्लेटफॉर्म को अपने फोन पर शामिल कर ही लीजिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई किल्लत तो आई नहीं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि फाउंडेशन के पैसे बचाने हैं, तो इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया?
1: मिर्ची अंशु।
0: हाँ जी, हमारे सूरज चाचू की ही मैं बात कर रही हूँ। भाई साहब, इस वक्त जरा घर के बाहर निकल कर देखिए, 5 मिनट खड़े तो होकर देखिए। सच कह रही हूँ, वो एक हल्का डार्कर टोन वाला फाउंडेशन जो आप 200-250 रियाल में खरीद के आते हैं ना, ये खर्चा जो है आपकी लाइफ में 101% बचेगा। भाई, गर्मी अपने परम चरम सीमा में पहुंचकर हमारी जिंदगी में कोहराम कैसे मचाती है, इसका लाइव एग्जाम्पल जो है ना, आप और हम इस वक्त जरूर देख रहे हैं। अंडे की भुर्जी तुम घर पे बनाओ या ना बनाओ, 2 मिनट में तुम्हारी भुर्जी कैसे बनती है ना ये बात जो है आप और हम समझ चुके हैं। इतना ही कहना चाहूंगी, खुद को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखें। हम उस फेज से गुजर रहे हैं जब गर्मी एक्सट्रीम है, तो कोशिश करें कि ओपन एरिया में बच्चों को खासकर 1 मिनट के लिए भी ना जाने दें। बाकी कलेजे के ठंडक के लिए तो मैं हूं ना यहाँ, टिक के बने रहो, सुनते रहो कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। जय श्री।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: किसी आवे। अरे जिंदगी का असल मजा तो बस इसी बात में है।
1: मिर्ची अंशु
0: कि जिंदगी के हर पल को हम मजेदार बनाएं। यार मेरा ना लाइफ का फंडा एंड फिलॉसफी जो है इन दिनों काफी सिंपल एंड काफी क्लियर हो चुकी है। चाहे मैं जो भी करूं, मैं ऑफिस का काम करूं, मैं घर का काम करूं, फिर चाहे मैं कपड़े भी क्यों ना समेटूं, लेकिन जो भी काम को मैं कर रही हूं ना उसे मैं मस्ती में मजे में एंजॉय करते हुए करूंगी। यार देखो दो तरीके हैं, एक तो काम को करना है सड़ सड़ के करो, यार ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी हो गया भाई, इवेंचुअली तुम्हें ही करना है ना। तो दूसरा तरीका है जब पता है कि हमें करना है तो उसे दिल से जीते हुए मस्ती में खुशी से करो यार। एंड एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ना तुम्हें लाइफ का हर मोमेंट हैपनिंग लगने लगेगा क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को हैपनिंग बनाने का ठान लिया है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच तो मैं वैसे भी बड़ी खुशी से करती हूँ लेकिन पूरी तरह से फोन से डिस्ट्रैक्टेड, सोशल मीडिया से दूर, अपने खाने की प्लेट में फोकस्ड होकर उस खाने को एंजॉय करते हुए खाना है। एंड आज का मेरा यही टारगेट है। How about you? 5000 1896. Look forward to hearing from you. Instagram Mirchi1 Kataria Mirchi Anshu. Meanwhile, stay tuned to Mirchi Bandi ka naam Anshu. Enjoy.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। This is Rangbar Se.
4: Number 20.

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप इसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. Hello.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं.
1: हाँ जी बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ. आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस. आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना.
1: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा.
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर. इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना. अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर. मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है. कहाँ कुरियर कर दूँ? आप आगे ले लेंगे इसको.
1: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7500 रुपए का.
1: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था. मैंने 7000 रुपए दे रहा हूँ मुझे.
2: नहीं नहीं सर ये 25000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए.
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए.
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना. मैं आपको आगे बता रहा हूँ. 50000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50000 रुपए कट गए आपके. सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर. करोड़ों की मशीन है. आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने. उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से. वो मशीन महंगी आती है. 20000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं. 30000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है. आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है. और 15000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है. कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना. 7500 रुपए आपके बचते हैं.
1: ये भी तुम्हें रख लो. ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार? आपका पैसा आपको वापस देंगे हम.
1: तो भाई आप ही रखो यार. आप मतलब हमें ज्यादा रख लो या बीच में रख लो हमें ज्यादा. अरे यार हो गया. आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार.
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना. ये तो कम डीडीए की तरफ से. आप एक तो गुस्सा ना करें. एक सेकंड फोन आ रहा है. रुकिए रुकिए. हेलो. हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से. सर आपके 5882 रुपए बनते हैं. आके ले जाइएगा ठीक है. हाँ संदीप जी. आप मुझे बताइए. आप मुझे
1: आपने
2: बात सुनिए. आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं. मेरी बात सुनिए. मेरी बात सुनिए संदीप.
1: बोलो बोलो
3: संदीप. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बन गया है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: ये पगला
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है. पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Number 17.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

रात लंबी हो जाए ना तो आदमी अक्सर दो चीजें करता है, पुरानी बातों को पढ़ता है और पुराने गाने सुनता है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, बस एक गाने में पहचान लेते हैं। और शायद इसलिए पिछले दो दशकों से हमारे हार्ट ब्रेक की आवाज में एक नाम बार बार सुनाई देता है, सईद कादरी। कभी किसी के होने की ख्वाहिश,

सईद कादरी, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, जरा सा हाले दिल। इमरान हाशमी की फिल्मों में तो जैसे उनकी कलम ने एक पूरी दुनिया बना दी, लेकिन बात सिर्फ इमरान की नहीं है, आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, क्योंकि हमने उनके अल्फाज को अपनी कहानियों में लगा लिया, अपनी रातों में उन्हें गुनगुना लिया। बस जिस आदमी ने वो अल्फाज लिखे उसका नाम कहीं पीछे छूट गया। तो याद रखना, ये सारे जज्बात जो इन गानों में हम महसूस करते हैं, ये देन है सईद कादरी के। नंबर 15 पर इस बार है टॉक्सिक का ये गाना मदहोश। नंबर 14।

यारी नंबर 13 पर है और धुरंधर ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जब कहानी इतनी बड़ी हो कि दो फिल्में भी छोटी पड़ जाएं, तो मीडियम का फैसला कौन करे। धुरंधर को दो फिल्में मिली, तीन तीन चार चार घंटे लंबी, फिर भी लगा यार और है, और यही तो सिनेमा का असली जुगाड़ है। कभी कभी फिल्म मेकर के पास कहानी होती है लेकिन मीडियम उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब फाइटर को देखिए, ऋतिक रोशन, एयरफोर्स, सिद्धार्थ आनंद, फाइटर जेट्स, पाकिस्तान से जंग और वो स्केल, सब कुछ आंखों के लिए बना था लेकिन कहानी ने दिल को पकड़ा ही नहीं। और फिर आती है एक वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर। इसमें कोई सुपरस्टार नहीं, कोई थिएटर का शोर नहीं, कोई बजट की ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन कारगिल की वो कहानी जो स्क्रीन पर हवा में उड़ती है ना, आप देखते नहीं हो, आप उसमें खो जाते हो। बस यही फर्क है, OTT हो या सिनेमा, मीडियम कहानी का साइज तय नहीं करता, कहानी मीडियम तय करती है। क्योंकि VFX आंखों को रोक सकता है, स्टार्स आपको थिएटर तक ला सकते हैं, लेकिन कहानी ही आपको कुर्सी से बांध के रख सकती है। बाकी सब एपेटाइजर हैं, मेन कोर्स में अगर दम नहीं है तो प्लेट कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मजा नहीं आता। ऑपरेशन सफेद सागर अब OTT पर स्ट्रीम कर रही है, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। खैर, मूविंग टू गाना नंबर 12, अच्छे गाने का बुरा रीमेक, आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम राघव जुयाल फिल्म भाई तेरा स्टार है। नंबर

0: या मैं?
1: ये क्या सवाल है?
0: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
2: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची। इट्स हॉट। बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
5: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
6: Number 11.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
4: नहीं यार, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
3: किसी दिन वरदाना के पूछा, पापा एक्टिंग

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है, लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और एआर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
2: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

तेरा मेरा रिश्ता, एक गाना जो दो जेनरेशंस को एक ही फीलिंग में बांध रहा है। पर शायद इसलिए आवारापन 2 की कहानी मुझे सिर्फ एक सीक्वल की कहानी नहीं लगती, मुझे लगता है ये सिनेमा के एक खोए हुए हिस्से की वापसी है। एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में एक हेल्दी मिडिल क्लास हुआ करता था। क्वीन, कहानी, पीकू, हिंदी मीडियम, बधाई हो, बरेली की बर्फी, ना सबसे बड़ा स्टार जरूरी था, ना सबसे बड़े सेट, बस कहानी में दम होना चाहिए था। फिर ओटीटी आया और पहले तो लगा कि वाह यार, अब हर कहानी को जगह मिलेगी। लेकिन फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सिलेक्टिव हो गए और थिएटर्स का स्केल बढ़ता गया और बीच में एक अजीब सी खाली जगह बन गई। ना फिल्म इतनी बड़ी कि थिएटर में एक इवेंट बन सके, ना इतनी ज्यादा सेफ कि ओटीटी उसे उठा ले। और शायद इसलिए राइटर्स ने भी वो कहानियां लिखना कम कर दिया। लेकिन देखिए आवारापन 2 को, कोई दुनिया बचाने नहीं आ रहा, बस एक कहानी है, इमोशन है, कैरेक्टर्स हैं और ऑडियंस उसमें फिर से घर बना रही है। इसी काउंटडाउन में गाना नंबर 9 है धुरंधर का शरारत, और धुरंधर स्केल में बहुत बड़ी थी लेकिन एट इट्स वेरी कोर उसमें एक कहानी थी और इसलिए ऑडियंस उसके साथ चली। बड़ी फिल्में प्रॉब्लम नहीं है, खाली फिल्में प्रॉब्लम है। शायद ऑडियंस ने मिडिल को रिजेक्ट नहीं किया, शायद हमने मिडिल बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब नंबर 8 पर है कॉमेडी फिल्म, टिपिकल फिल्म, धमाल 4 का ये गाना कॉल्ड सारी। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
5: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
6: Happy taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
5: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
7: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health. Because aap deserve karte hain best care.
5: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homezaras. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homezaras.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
1: Visual media partner Rehab Media.
5: Production partner Symphony.
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 7. Come on.

0: अपनी इस फिल्म टॉक्सिक के साथ यश ने एक बात तो क्लियर कर दी है, बच्चों को फिल्म से दूर रखिएगा। लेकिन इसी यश के सामने अब एक ऐसा किरदार है जिसे बच्चे भी जानते हैं और बड़े भी जानते हैं, शायद पूरा देश अपनी अपनी नजर से जानता है, रावण। रामायण में राम को महान बनाने के लिए सिर्फ राम का अच्छा होना काफी नहीं था, सामने रावण भी ऐसा होना चाहिए था जिसे हराना एक वक्त पर नामुमकिन लगे, और यश ने इसी बात को समझा है। रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में जब उनसे पूछा गया कि राम बनने के बजाय आप रावण क्यों बने, तो यश ने जवाब कुछ ऐसा दिया।
1: राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी चाहिए सर, मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहाँ पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते
0: हैं। यार कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बात में लॉजिक भी है, क्योंकि रामायण की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसका अंत हमेशा होता है। अब सवाल यह है कि नितेश तिवारी की रामायण उस कहानी को हमारे लिए दोबारा कैसे जिंदा करती है, और म्यूजिक वो तो पूरी दुनिया बनाएगा भी और सजाएगा भी। ना अनफॉर्चुनेटली नंबर 6 पे जो गाना है चुनरी चुनरी, उसने एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश तो की लेकिन इट डिडंट सक्सीड। और वैसे ही रामायण के गाने होपफुली हमें उस युग में ले जाएंगे, लेकिन अब काउंटडाउन में है आवारापन की दुनिया। नंबर 5 पर सुबोध शर्मा की आवाज में दिस इज वे जुनून। नंबर 5।

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. जेलसी को पैशन बना दिया है, पोजेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया, इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
4: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
3: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Only on Mirchi. It's hot.
7: Number 3.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट, बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता है। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग इट वॉज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रोमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस, समवन कम्स वंस इन एन एरा एंड बिकम्स एन अरिजीत सिंह। नॉट एवरी वन हैज द स्किल सेट ऑल्सो, नॉट एवरी वन हैज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑल्सो, एंड नॉट एवरी वन हैज द हार्ट ऑल्सो लाइक हिम टू स्टेप अवे इन द प्राइम। यानी ही हिमसेल्फ ऑल्सो इज टू टेल, इस गाने के लिए भी उसने मेरे लिए लड़ाई की है, उसने बोला है सबको अरे अमल ने इतना अच्छा गाया मुझे क्यों गवा रहे। तो मैंने बोला ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा इन लोग किसी की भी नहीं है, ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है दैट यू एटलीस्ट सी इफ यू लाइक द सॉन्ग, पूरा बन गया चेक इट आउट। सो इट वॉज जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बिफोर अभी दैट सॉन्ग केम दैट ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड रिविजिटेड द सॉन्ग 2-3 टाइम्स।
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर 1 बन गई है। दिस इज ये आवारापन, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिल और दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
2: यार मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
3: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: आइए आपका इंतजार था।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ऐसे ही इंतजार करते करते सबका स्वागत करने को तैयार हो गया है। बता दें, अराइवल गाइडलाइंस आ गई हैं क्योंकि बिजिएस्ट अराइवल पीरियड आ चुका है। अगस्त के एंड में सब लौटने वाले हैं और इसके लिए बकायदा दिस अगस्त दोहा इज वेलकमिंग थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी छुट्टियां पूरी कर वापस लौट रहे हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग विद द लिटिल वंस के लिए एक बकायदा एयरपोर्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री चाइल्ड स्ट्रोलर जो है वो ऑफर किया है, यानी कि वो फैमिलीज जो वापस लौटेंगी और एयरपोर्ट पर उनके साथ बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रोलर नेस्ट पे आपको स्ट्रोलर्स मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है एंड बड़ी बात यह है इसके अलावा शटल बग्गी सर्विसेज भी आपको अलग अलग स्टेशन से मिल जाएंगे। कॉन्कोर्स डी एंड ई से अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो आपको उस पूरे रास्ते पर मिलने वाला है एंड सीट होगी तो ही जगह मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बग्गी जा रही है, चार लोग उस पर लदे और पांचवें आप बन के सूटकेस लादे जा रहे हैं, मतलब जगह देख के बैठना। और इसके अलावा हम आपको बता दें, स्कैन एंड गो विद ई गेट्स विल बी अ स्मूदर इमिग्रेशन, तो आप उसी की तरफ जाइएगा और बैगेज रिक्लेम एरिया में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सबसे बिजिएस्ट टाइम है एयरपोर्ट के लिए, स्पेशली अराइवल्स पर, जहां पर बहुत सारे लोग छुट्टियां मना के अपनी मस्ती से लौट रहे हैं। चाहे बच्चों की बात कर लें, उनको स्कूल जाने का एकदम मस्त मजा है, वहीं अगर फैमिलीज की बात करें तो लेडीज एंड जेंट्स जो लौट रहे हैं वो अपने दोस्तों यार के साथ वीकेंड पे पार्टी मनाएंगे एंड क्या क्या किया ये बताएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको आना तो है एंड हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि आपको एकदम सुगम तरीके से अराइवल मिलेगा, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट स्मूथ अराइवल्स ऑन एनी एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए तालियां हो जाए भाई। ऑल द बेस्ट, मिर्ची इज हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
2: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
2: भाई मानक, मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी.
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
2: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
2: अच्छा, तो दुबई जाना है.
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
2: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
2: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने एकदम सही कह रहे.
2: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
3: नहीं बोलना, नहीं बोलना.
2: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ.
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
1: करवा देना भी है आपसे.
2: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
3: सॉरी सॉरी सॉरी.
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
3: ओके ओके.
2: आई लव यू.
3: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट. गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी. शाम एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.

आपको कैसा लगता है जब आपकी पार्किंग में कोई और गाड़ी लगा देता है या आपकी पार्क गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा देता है? आई एम श्योर आप जबरदस्त इरिटेट हो जाते होंगे। अगर कंपाउंड में है तो आप ग्रुप पे लिखने लगते हैं, गाइस जल्दी ये गाड़ी हटाओ, प्लीज रिमूव योर कार, एटलीस्ट हैव दिस मच सेंस, और ना जाने क्या क्या। अब ऐसे ही सेंस आपको कैसा लगता है जब आपकी पार्किंग में कोई और गाड़ी लगा देता है या आपकी पार्क गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा देता है? आई एम श्योर आप जबरदस्त इरिटेट हो जाते होंगे। अगर कंपाउंड में है तो आप ग्रुप पे लिखने लगते हैं, गाइस जल्दी ये गाड़ी हटाओ,

है, यानी कि उनकी फैसिलिटीज, उनके सर्विस कनेक्शंस जो भी हमारे एरिया में करामा से रिलेटेड हैं, हम उनको बिल्कुल खाली रखें। यस, करामा की तरफ से हम सबसे ये रिक्वेस्ट अर्ज की गई है कि उनके जो पॉइंट्स हैं, जो करामा के स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स हो या फिर वाटर सप्लाई की फिटिंग्स हो, वहां के आसपास उनको बिल्कुल क्लियर एक्सेस चाहिए। उनका मानना है कि उनके इंस्पेक्शन, उनके मेंटेनेंस, उनके टेक्निकल एडजस्टमेंट्स किसी भी टाइम आ सकते हैं। और ऐसे में कई बार होता है लोग करामा के उस छोटे से हाउस के आसपास अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और ये उनके काम को कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। अगली बार जब आप हड़बड़ी में हो और सामने करामा का वो जोन दिखाई दे रहा हो तो प्लीज अपनी गाड़ी वहां नहीं लगाइएगा। आप तो ये लगाकर सोचेंगे कि अरे 10 मिनट की बात है, लेकिन उस 10 मिनट में अगर ऊपर वाला ना करे, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो आप तो दोषी बनेंगे ही बनेंगे। इसकी वजह से किसी के लिए जान का खतरा भी हो सकता है, इस बात को भी समझिएगा। आई एम श्योर आप इतनी बात को ध्यान देंगे। एंड करामा के इन ऑफिशियल एडवाइजरीज के बाद उनकी पब्लिक फैसिलिटीज के आसपास आप स्पेस को एकदम क्लियर रखेंगे। एंड आई एम श्योर हम समझदार हैं, हमें इशारा दे दिया गया है, हम बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

जुबिन नौटियाल की आवाज में बर्बाद हो सकती हो अगर आप थोड़े अलर्ट नहीं रहे तो। मेहनत की कमाई चंद क्लिक्स में हमने गवाई वाली सीन ना हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कुछ याद दिलाया है। MOCI ने हमसे कहा है कि हम अपनी उंगलियों को थोड़ा काबू में रखें क्योंकि होता क्या है ना, अरे वाह 90% का डिस्काउंट ये प्रोडक्ट पे, अरे और इसे खरीद लेते हैं। और जैसे ही आप उस अननोन लिंक को क्लिक करते हैं शायद आप हैकर्स को अपना एक्सेस दे देते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक सुपर इम्पोर्टेंट पब्लिक एडवाइजरी इशू की है साइबर थ्रेट्स और फिशिंग अटैक से बचने के लिए। होता क्या है आजकल के हैकर्स बहुत क्लेवर हैं भैया, इन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट्स तक बना ली है। MOCI ने हमें वार्निंग दी है कि किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स, अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेज, सस्पिशियस एड या फिर ऐवे ही गूगल सर्च रिजल्ट वाले लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। यस प्लीज डोंट क्लिक, क्योंकि हमारी पर्सनल आईडी हमारे बैंक अकाउंट के OTPs का गेम बजा सकते हैं। तो अब आप समझदार हैं, इशारा काफी है। MOCI ने हमें आगाह कर दिया और बाकी हमारी मर्जी, क्योंकि अब सिर्फ कंट्रोल उदय कंट्रोल नहीं, फिंगर कंट्रोल बॉस, फिंगर कंट्रोल चाहिए। उंगलियों को थोड़ा कम घुमाइए, हर चीज जो डिस्काउंट या ऑफर में दिखती है वो कभी कभी पूरी मुसीबत का घर लेकर आ जाती है। 89.6 मिर्ची 1, अपनी अकल लगाओ, अपने आप को बहुत अलर्ट रखो। मिर्ची थॉट।

0: एक ही तो दिल है कतर, कितनी बार जीतोगे?
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है। और जब मैं ये सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है वाकई में यार ये तो दिल जीत लेने वाली बात है। अब देखिए, कतर में हमारे खाने पीने का कितना ख्याल रखा जाता है कि हम इधर उधर कहीं भी जाएं, कहीं भी खाएं, छोटा सा कैफेटेरिया हो या बढ़िया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सब में फूड सेफ्टी मेंटेन रहे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2026 के सेकेंड हाफ में यानी कि पिछले 3 महीनों में सबकी हेल्थ और खाने की सेफ्टी के लिए एक जबरदस्त टाइट इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया था। और इस दौरान नंबर तो सुनिए, 136,000 से भी ज्यादा, 1,36,000 से भी ज्यादा फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज में MOPH के टेस्टिंग की गई। और इतने ही नहीं, कतर के पोर्ट्स पर आने वाले 29,000 से भी ज्यादा इंपोर्टेड फूड शिपमेंट्स की भी चेकिंग हुई और लोकल लेवल पर हजारों इंस्पेक्शन विजिट मारी गई कि कोई रेस्टोरेंट अनहाइजीनिक तरीके से तो खाना नहीं बना रहा है, ताकि हम तक सिर्फ ए ग्रेड क्वालिटी का खाना पहुंचे और हमारी सेहत मेंटेन रहे। और इतने नहीं, डिजिटल फ्रंट पर भी वथिक सिस्टम के जरिए ना हजारों फूड आइटम्स को अप्रूव किया गया है, ताकि स्मूथ बिजनेस के साथ साथ टॉप क्लास सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। और ये सब कुछ 360 डिग्री से देखते हुए MOPH के इस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पिछला 3 महीना हमारी फूड सेफ्टी बनाए रखी, हाइजीन के साथ साथ कैसे हमें बेहतरीन क्वालिटी के फूड मिले इसका भी देखभाल किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कितनी बार दिल जीतोगे? और जब हम और आप अगली बार कहीं जाते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पता नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। याद रखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चौकन्नी पैनी निगाहों के आगे कोई बदमाशी खाने पीने से कर नहीं सकता। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट। चलो भैया, एक करा किसी बात पे हो जाए पकौड़ों के साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

ये आवाज भूले तो नहीं ना बच्चों, अब भूलना भी नहीं क्योंकि अब इसके दिन पास आ गए। 89.6 मिर्ची वन पर पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही सुकून भरे पल आने वाले, क्योंकि एक बार बच्चे स्कूल गए, रिमोट पे अपना कब्जा और घर में मम्मियों को मिलेगा मी टाइम। 89.6 मिर्ची वन पर मस्तमौला गौरव बात कर रहा है उस बैक टू स्कूल कैंपेन की जो 2026-27 सीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है। भाई अब फाइनली घर पे थोड़ा समय तो पेरेंट्स को शांति के साथ टीवी पर अपने कब्जे के रूप में मिलेगा, वहीं बच्चों के लिए इमोशनल मोमेंट है वो अभी तक थोड़ी देर और सोने दो, और मम्मी पापा कहते थे ठीक है छोड़ो ना वेकेशन ही चल रहे हैं। लेकिन बच्चों अब बैक टू स्कूल आ गया है, यानी कि कंधे पर बस्तों का बोझ होगा, स्कूल में पढ़ाई का लोड, और शाम को लौटते ही दोस्तों से थोड़ी देर मस्ती के बाद फिर अगले दिन स्कूल जाने की होड़। तो तैयार हो जाओ, आपके लिए आपके बेस्ट डेज आर कमिंग एंड ट्रस्ट मी, आज आपको भले ही ये लोड लगता है बच्चों, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने आज से कई साल पहले स्कूल जाना छोड़ दिया, आज मौका मिले तो वो फिर चले जाएं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ

0: बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: आप सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखे की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
4: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham ek stage aur do kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

अब कतर के किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में सिर्फ टीम्स नहीं जीतेंगी, प्लेयर्स नहीं जीतेंगे, आप भी जीतेंगे। हाँ भाई, अब ऐसा ही इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है हमारे कतर में। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है कि कतर ने लॉन्च कर दिया एक ब्रांड न्यू नेशनल इनिशिएटिव जिसका नाम है हाई यो। यस हाई यो, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टेडियम जाकर मैच देखने से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देगा बल्कि आपको रिवॉर्ड्स जीतने का मौका भी देने वाला है। यस, कैसे? बड़ा ही सिंपल है। हर एलिजिबल स्पोर्टिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 1000 हाईयो पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप पार्टनर नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव ऑफर्स यूज कर पाएंगे। रिमेंबर, आपने जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लिया, हाईयो में आप जैसे जैसे पॉइंट्स कमाएंगे वहां पर ढेर सारे पार्टनर्स आपको ऑफर देंगे और उनमें से जो भी चाहो आप उस एक्सपीरियंस को रिडीम कर सकते हो। एंड बड़ी बात यह है कि इसमें जितना ज्यादा स्पोर्टिंग इवेंट जाकर आप देखोगे उतना लेवल आपका बढ़ता जाएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और टीयर्स के साथ प्रोग्रेस, मोर ऑफर्स, मोर बेनिफिट। और सबसे खास बात, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। एंड दिस इज फॉर ऑल द पीपल, यानी कि कतरी सिटीजंस एंड कतर के सारे रेसिडेंट्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब स्टेडियम जाने के लिए बहाना ढूंढेंगे हम कि अरे भाई चले जाते ना, एक मैच देख ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके साथ बहुत सारे और बेनिफिट एंड ऑफर्स मिलने वाले। 89.6 मिर्ची 1 पर थैंक यू टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, थैंक यू टू द एडमिन जिन्होंने इस बारे में सोचा और हम एज अ फैन भी कुछ जीते इसका ध्यान दिया। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

खतर अब मोबिलिटी के नए दौर में आ रहा है। यस, एंड ओवरऑल कतर एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर अगर बात करें तो फ्यूचर ऑलरेडी अभी से आ गया, ऐसी फीलिंग आने लगी है। कतर का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वहां पर एक नए एरा में एंट्री की बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। नेशनल विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे काम तेजी से किए जा रहे हैं और अब ऑटोनोमस मोबिलिटी यानी कि बिना ड्राइवर वाले व्हीकल्स जो हैं वो बहुत तेजी से सड़कों पर आपको दिखाई देने वाले हैं। और हमारे कतर की ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नेशनल विजन 2030 को जिस तरह से ध्यान में रखते हुए सुपर फास्ट मोड में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब आप टैक्सी बुक करेंगे और इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी आपके दरवाजे खड़ी होगी। इसका फर्स्ट फेज जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ था उसे करवा ने अपने एप्लीकेशन के थ्रू पायलट कमर्शियल सर्विस में लगभग 2500 ट्रिप पूरे करते हुए एक अच्छी फीलिंग तो दे दी थी कि ऐसा होने वाला है। इन सब के बीच अब सोचिए आने वाले टाइम में ये इको फ्रेंडली राइड्स विदाउट एनी ड्राइवर हैसल फ्री तरीके से आपको अगर मिले तो अपने आप में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा गया सीन ही तो लगेगा। इन सब के बीच मवानी कतर ने भी कमर्शियल पोर्ट्स पर कतर में स्ट्रांग कार्गो एक्टिविटी देखी है, जो एक मुल्क के तरक्की का एक और नया पैमाना भी बताती है कि कतर को एज अ कार्गो हब भी दुनिया में देखा जा रहा है। एंड आने वाले टाइम में यहाँ भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम में आप अभी जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर मोबिलिटी को देखते हैं ना, वो और स्पीड अप होने वाला है, वो और नए टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजिया वाली फीलिंग देने वाला है। एंड इसके लिए थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे कतर को मेहनत के साथ हर दिन और बेहतरीन तरीके से तेज तर्रार बना रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अब डोज लव का हो या एंटरटेनमेंट का, आपको मिर्ची सारे डोज देता है। और बारी अब एंटरटेनमेंट के डोज की है, जो हम सितंबर में आपको देने जा रहे हैं विद द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड दिस विल बी अ मैजिकल इवनिंग, आई एम टेलिंग यू। मेंटलिस्ट क्या होते हैं? मेंटलिस्ट वो मजिशियन है जो इल्यूजन क्रिएट कर ऐसा सपना मैजिक आपके दिमाग को पढ़ने का दिखाएंगे, जिसको देखकर आप कहेंगे ये कैसे कर पाती हो। इसीलिए तो सुहानी पूरी दुनिया में जानी जाती है। एंड अब हमारे कतर आ रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस एक्सपीरियंस को उनके सामने रूबरू होकर ले एंड सीखे एंड समझे, इस उम्मीद में कि आपके दिमाग को भी वो पढ़ेंगी एंड कुछ तो मजेदार करेंगी। आप अपनी टिकट्स बुक करा लो एससीटी स्नूनू पर। इस वक्त आपको मिल रहा है 30 कतारी रियाल का कैशबैक विद एवरी टिकट परचेस। एंड उससे भी बड़ी बात यह है, हमारी टिकट आपको अब सारे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, अर्ली बर्ड ऑफर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एंड वंस यू विल बुक द टिकट्स, यू विल कम टू नो कि कितनी जबरदस्त शाम है। एंड जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे, धड़कनें और बढ़ेंगी और भी सारी चीजें ऐड होंगी, वो सभी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। ऑलमोस्ट 1 month 5 days आर लेफ्ट। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव सिंह टाटा बाबा लौटेगा कल शाम एक बार फिर से बहुत सारे मस्ती धमाल के साथ। तब तक के लिए हबीबी मा सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर करार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में. दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है. कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है. वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग. मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो. आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो. इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी. आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है. देन लास्ट ईयर मिस मैच का. इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज. इश्क है फ्रॉम मिसमैच्ड इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स. ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई. और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन. मुसाफिर कैफे का गाना है. आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है. मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी. दो लोग पहाड़ों में, छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है. एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना. ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है. दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश. शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. उनकी कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है काफी है ना. अ नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना हम। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: भाई। आप ही रखो यार, आप हमेशा रख लो, ये बीच में रख लो हमेशा। अरे यार पब्लिक को यार,
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना।
4: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
4: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: समेटे। जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, द एंटायर जेनरेशन फेल्ट इट टुगेदर। फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन दिस सॉन्ग तारे इज माय फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनेगा। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। गाने सुजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन। आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे। आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे। उनका नया नवेला गाना आया है बरसात। द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली, बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है। ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है। ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है, बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट। इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी। रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एंड सेम वही बात बरसात। इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा। द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल। फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन। फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस। एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहाँ वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है। वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो। एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बंजारे आर बैक एट इट अगेन। उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। बंदी का नाम है RJ कनेका। एंजॉय।

0: कितने मेरी गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है. गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में. राघव कौशिक का ही म्यूजिक. गाने का नाम है दरमिया. दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 5.

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 Hafton Se Is Countdown Par Barkarar, this week on Gaana Number 4.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika Ke Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hame achhe lagne hote hain na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hain. Wo bas hamare raaste aa jaate hain. Aise maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो I'm going to play that song for you, which is basically about one-sided love. And इतने poetic way में इन्होंने one-sided love के बारे में बात करी है. You know, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर one-sided love के बारे में बात हुई है. Honestly, गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है, दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकी सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है, पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी, स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Cunning on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है Shisha, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring Swara Verma. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके Shisha is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मम, व्हाट वाज द फीलिंग?
5: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
4: वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल,
3: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर, एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे, टीएनसी अप्लाई।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time,
6: the mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal, tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKaneka। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशन हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKaneka पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अशकाय, वी टेक योर सजेशन रिकमेंडेशन वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
3: Teri Deewani
2: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Blana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi there, what's up? Tell me.
1: खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है. क्या करूँ यार, थक गया हूँ.
2: ओ मैन, इट्स सो सिंपल यार, घड़ी देखना बंद कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. फैंटास्टिक.
3: खाने को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़.

0: लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों, लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना, क्योंकि किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है।
1: मिर्ची कैफे।
0: हाय, मैं हूँ आपके साथ पारुल। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे। आज एक शायराना अंदाज में शुरुआत की, क्यों ना हो यार। ये गाना सुना हमने पीकू फिल्म से, द सॉन्ग इज कॉल्ड लम्हे गुजर गए। आपको पता है इसके सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर सब कुछ ही अनुपम रॉय हैं, और क्या अनुपम तरीके से इन्होंने ये गाना लिखा है। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ब्यूटीफुल शुरुआत आज के इस शो की। एंड यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट लम्हे। यही तो है, बस टाइम ही तो है, मोमेंट ही तो है। एंड व्हाट अ प्रिविलेज टू बी बिजी विद व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़े कम लकी हों, जिन्हें वो काम करने पड़ रहे हैं जो वो नहीं चाहते करना, टू अर्न द लिविंग एंड एवरीथिंग। बट टू दी अदर्स, जैसे कि मेरे जैसे लोग जो यू नो कर भी हो रहे हैं, जो उनके दिल को खुश रखता है, लेकिन तब भी कंप्लेन जरूर करते रहते हैं हर चीज के लिए। तो सिर्फ कंप्लेन नहीं करो यार, ग्रेटफुल रहो। और वो भी लोग जो अपने बिना मर्जी का काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा आपके आसपास जिसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, यू नो। तो आज का ये शो इसी नोट पे शुरू करते हैं। अगला गाना जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, शिल्पा राव अमिताभ भट्टाचार्य, ये गाना फ्रॉम द फिल्म लुटेरा, 2013 की फिल्म। बहुत ही बेहद ही खूबसूरत गाना, और ये फिर से उसी डुओ का है, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी, जिन्होंने बहुत सारे मैजिकल लम्हे क्रिएट किए हैं अपने गानों से। एंड यू नो, इसका म्यूजिक, इसकी सिंगिंग शिल्पा राव ने जो की है, द कॉम्पोजिशन, द लिरिक्स, एवरीथिंग इज सो सुप्रीम कि ये गाना हर इंसान के दिल को छूता है। चलो सुनो इसको, मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तो ये शो शुरू हुआ है, बहुत सारे मजेदार गाने आपके लिए लाइंड अप है आज। सुनो मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची, मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mechi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mechi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
2: वाली बातें कर रहा
3: है? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: आपको बताया 2003 में ये फिल्म आई थी चलते चलते, और ये जो एल्बम था ना पूरा, बहुत सारे गाने हैं चलते चलते में और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। 18 लाख यूनिट्स इसकी बेची गई थी और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म साउंडट्रैक्स बना था 2003 का, बिलीवेबल। और ये गाना आदेश श्रीवास्तव को बिलोंग करता है, एंड ऑफकोर्स अभिजीत जिन्होंने गाया है, एंड ऑफकोर्स शाहरुख और रानी को आप नहीं भूल सकते इस गाने के लिए।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बाय द वे आपको बताऊं, एक बहुत ही प्यारा वर्ड मैंने पढ़ा जो मुझे यू नो ये गाना सुनते याद आया। द वर्ड इज कॉल्ड AMAE, ओके, एंड इट मींस कि देयर इज अ कंफर्ट ऑफ बीइंग एबल टू डिपेंड ऑन समवन विदाउट आस्किंग। कुछ लोग होते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा या पूछना भी नहीं पड़ेगा या कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, तब भी हम उस इंसान पे हमेशा डिपेंड कर पाते हैं। सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट इज। और अगले गाने की तो मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। तो ये जो गाना था रहमान सर ने बनाया, ओके, जो अगला लेकर आ रही हूँ आपके लिए, वो उन्होंने ओरिजिनली क्रिएट किया था। जो मेलोडी थी वो माँ तुझे सलाम एल्बम के लिए, और वो काफी यू नो स्लो मेलोडी थी, लेकिन आमिर खान जब लगान फिल्म में ये गाना आने वाला था तो वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थे विद द मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, पर उसको स्पीड अप किया गया टू यू नो मैच टू द रोमांटिक लिरिक्स ऑफ ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, और फिर ये गाना लगान फिल्म में लाया गया। What a beautiful song! मतलब किसी भी romantic relationship के लिए ये गाना apt बैठ सकता है। और आपको पता है इस गाने में मेरे जो favorite lines हैं, वो जो English का एक portion आता है बीच में, which says, My heart speaks 1,000 words, it feels eternal bliss, like roses powder, scarlet mouths like offering a kiss, no drop of rain, no glowing flame has ever been so pure, if feeling love can feel like this, Then I'm in love for sure. आपको पता है जावेद अख्तर साहब को हेल्प करने के लिए फरहान और जोया ने ये इंग्लिश वाले लिरिक्स लिखे थे इस गाने के, एंड द सॉन्ग इज एज क्लासिक एज वी ऑल नो। सुनते हैं इस गाने को, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: It's decades of excellence in Qatar. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman heavy duty trucks and boom trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: 1997 से ये गाना लेकर आई मैं आपके लिए. विरासत वॉज द मूवी, पायल ने चुनमुन चुनमुन. इतना खूबसूरत गाना ये कुमार सानू और के एस चित्रा की आवाज में अभी आपने सुना. इसको कंपोज अनु मलिक ने किया था, जी यस, और साथ में जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स थे. अनु मलिक ने कुछ इतनी प्यारी मेलोडीज दी है ना उस वक्त में कि कभी कभी सुनकर ऐसा लगता है सच में ये वही है आग लगाने वाले.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और आग लगाने से मुझे एक लाइन याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी रिसेंटली कि वी ऑल विल बी वेरी वेरी डिफरेंट इन एवरीवन स्टोरीज. चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें अच्छे इंसान बने रहने का, लेकिन बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज में आप बहुत खराब भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, आपसे बुरा इंसान भी कोई नहीं हो सकता है. मुझे लगता है कि हमें अपनी तरफ से ये ट्राई करना चाहिए कि हम किसी का बुरा ना करें एविडेंटली. तो मुझे यहाँ पे ना जेंजी का नॉनचलांट बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो. और ये जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको पता है जितना आपको याद होगा उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में. यू वुड रिमेम्बर शामक डावर फॉर हिज डांसिंग, राइट? शामक डावर ने गाना गाया भी था एंड उनके साथ ही को परफॉर्म किया था चेतन शशितल ने. द सॉन्ग इज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इट्स कॉल्ड जाने किसने. राम संपत आपको याद है, डेली बेली, तलाश, सत्यमेव जयते, वो सब बनाए थे उन्होंने साउंड ट्रैक्स. उसके भी पहले, बहुत पहले राम संपत ने ये कंपोज किया था गाना. एंड ऑफ कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग इस गाने के बारे में बात यही है कि शामक डावर, जिसको हम डांसर की तरह याद रखते हैं, इन्होंने ये गाया भी था, ऑफ कोर्स अलोंग विद चेतन शशितल. सुनते हैं इस गाने को, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

Ciao.

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
3: नहीं यार, मेहनत तो है,
2: मेहनत
3: तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
2: किसी दिन मर्दाना के पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
3: ये क्या सवाल है?
4: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
5: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह,

0: मुझको डसती हैं तन्हाइयां। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने इंटेंस लिरिक्स के ऊपर जब ये पेपी गाना आ जाता है और फिर जब वो के और इमरान हाशमी का एक यू नो मैजिकल डुओ बन जाता है, तो वो गाने ना फिर बहुत सालों तक याद रखे जाते हैं। द किलर फिल्म से सुना आपने के और श्रेया घोषाल की आवाज में तेरी यादों में। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ब्यूटीफुल ना बहुत सारी बातें भी लगती हैं। क्या आपने इस जमाने में किसी को ये सब करते हुए देखा है? जब कोई किसी रूम में आ रहा है, या फर्ज करो कि आप किसी रूम में जाते हो एंड समवन सिटिंग देयर जस्ट स्टैंड्स अप आउट ऑफ जस्ट सम नॉर्मल मैनर्स, ओके। क्या आपने ये देखा है कि लोग आपसे बात करते वक्त अपना फोन नीचे रखते हैं एंड दे एक्चुअली सिट एंड टॉक टू यू इंटरेस्टेड होके? क्या आपने कभी ये देखा है कि यू नो सिर्फ अपने जानकारों के लिए नहीं, लेकिन अगर आप किसी गेट से निकल रहे हैं तो जो आपके आगे जो शख्स है उसने सिर्फ वो गेट होल्ड कर रखा है कि जिससे आपको यू नो थोड़ा ऐसे आसानी हो जाए वहां से आने में? यार ये सारी जो मैनर्स की भाषाएं है ना, दिस इज कॉल्ड द स्वीट चिवलरी, और आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट, लेकिन ये ऐसे बहुत प्यारे मैनर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं डिस्पाइट ऑफ यू बीइंग अ गर्ल और अ बॉय और अ मैन और अ वुमन। अगर आप ये मैनर्स की भाषा, नैनो की भाषा अच्छे से फॉलो करते हो ना, देयर इज अ प्लेस दैट यू मेक फॉर योरसेल्फ इन यू नो स्ट्रेंजर्स के भी दिल में जगह बना लोगे आप। और ये जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, शुभा मुद्गल ने इससे और यू नो शांतनु मोइत्रा ने भी जिन्होंने एल्बम कंपोज किया, इन्होंने मिलकर बहुत सारी जगह बनाई थी हम जैसे बहुत सारे लोगों के दिलों में। द ट्रैक इज कॉल्ड सीखो ना, और उस वक्त ना 1999 में बहुत ही प्यारे ऐसे गाने आते थे जो मैं हमेशा हर शो पे आपके लिए लेकर आती हूँ, जो ऐसे पॉप एल्बम्स के होते थे और अब तक हम लोगों को, सब मिलेनियल्स को वो याद है। ऑफ कोर्स वो मैनर्स जिनकी मैं बात कर रही थी, मैनरिज्म्स, वो भी हमारे मिलेनियल्स के दिलों में बसे हुए हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें करो यार, और ये मैनर्स की और नैनो की भाषा किसी को भी बुरी नहीं लगती। डू दैट ऑल्सो व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। सुनो इस गाने को, आ रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड। सीखो

0: इत्तेफाक कितनी प्यारी चीज होती है ना, कभी कभी हमसे ऐसे काम करवा देती है और ऐसे लोगों से मिलवा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आपने सुना ये गाना शिल्पा राव की आवाज में, मुड़े मुड़े इत्तेफाक से, फ्रॉम द मूवी पा। और आपको बताया, शिल्पा राव ने ऑफिशियली बोला है कि ये उनका अभी तक का सबसे मुश्किल रिकॉर्डिंग सेशन था, सबसे मुश्किल गाना था, बिकॉज इलिया राजा जो कंपोजर हैं वो बड़ी आसानी से खुश नहीं होते थे, यू नो, विद द little nuances that he wanted to be in this song. और तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत प्यारे इत्तेफाक की बात जो कि अगले गाने से भी related है। एक movie है जिसका नाम है कारवां, KARWAAN, okay? और मुझे अभी तक कम से कम 3 से 4 लोग बोल चुके हैं कि मेरे को वो कारवां फिल्म देखनी है, मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ। लेकिन अगर आपने वो देखी है, आपको पता होगा कि पापॉन ने एक बहुत ही प्यारा गाना जिसका नाम है हार्टक्वेक वो गाया है इसमें। तो जिसने भी ये पिक्चर देखी है ना, ये गाना उस इंसान का फेवरेट गाना है। मेरे को बहुत लोगों ने ये गाना रेकमेंड किया है, रिक्वेस्ट किया है। आप सभी के लिए मैं ये गाना लेकर आई हूँ आज इस शो पे। इसको सुनो, एंजॉय करो। एंड फॉर ऑल यू अदर्स जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा एक नंबर है 7045983983, या फिर एक इंस्टाग्राम है जहां पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं paruls.world करके, जहां पे आप मुझे अपने गानों की रिकमेंडेशन सजेशन भेज सकते हो, ये बता सकते हो कि मिर्ची कैफे आपको कैसा लगता है, ये शो, इसके गाने, मेरी बातचीत, आप और क्या चाहते हो, फीडबैक भी दे सकते हो। गाने रिक्वेस्ट तो डेफिनेटली कर सकते हो जिससे कि मैं अगले एपिसोड में आपका गाना भी सुना सकूं इस शो पे। तो जिसने भी ये गाना नहीं सुना है, इट विल बी अ रियली pleasant breath of fresh air for you. सुनो इस गाने को, मैं आ रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned to Mirchi Cafe. मैं हूँ आपके साथ पारुल, it's hot. मुझे बहुत मजा आता है नए गाने आप तक इंट्रोड्यूस करने में।

0: Mirci. Iskaba na puskaba na sakaba na. Burga, burga, burga. Na vidva la burga. Mirci burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: Hello Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता इस्ता इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था.
2: आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके समझ गए. इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी फिर चिल्लाएंगे. तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
1: अभी पहले किया था.
2: अच्छा अच्छा आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
2: भैया इस तो बोल अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
1: जाना जरूरी है.
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई.
2: अच्छा तो दुबई जाना है.
1: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
1: हाँ ठीक है ठीक है.
2: मैंने सही किया ना बता दिया वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
1: आपने एकदम सही कह रहा है.
2: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
1: नहीं बोलना नहीं बोलना.
2: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ.
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसे ही बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
1: करवा देना भी है आपसे.
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
1: सॉरी सॉरी सॉरी.
2: ठीक है चलो पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
1: ओके ओके.
2: आई लव यू.
1: आई लव यू टू.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: इट्स हॉट.

0: आपको पता है जब मैंने ये फिल्म देखी थी ना गजनी, बहुत वक्त मुझे लगा था उस इमोशन से बाहर आने में, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन जो दिखाया है ना एक्टर एक्ट्रेस के बीच, द वे ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड राइट्स ऑन हिज बेयर बॉडी, यार बहुत प्यारा इंटेंस इमोशन क्रिएट किया था. एंड यू नो टू सिंग दिस सॉन्ग कैसे मुझे तू मिल गई, 22-23 साल के थे जब उन्होंने इतना इंटेंस गाना गाया था अलॉन्ग विद श्रेया घोषाल, और अभी तक का वो पेनी दयाल के लिए सबसे मुश्किल गाना था बिकॉज ही हैड टू फील दैट फिजिकली एंड इमोशनली द पेन, जिसमें वो यू नो आमिर खान नरेट कर रहे होते हैं कि कैसे मिल गई तू मुझे, किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. यू नो आई हैव अ पर्सन इन माय लाइफ, उसको यू नो बचपन से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके कंधों पर कि वो कभी अपनी लाइफ में कोई हॉबी या शौक बना ही नहीं पाया. और अब व्हेन ही इज यू नो ओवर 35 इयर्स ऑफ एज एंड नाउ ही इज कंडीशन इन अ मैनर कि अगर वो खुद के ऊपर अपने शौक के ऊपर थोड़ा सा भी वक्त निकाल लेता है या कुछ नई चीजें करने की कोशिश करता है तो उसको वो गिल्ट हो जाती है कि यार ये तो मैंने अपने ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इज व्हाट ही सेज. ऐसे मत करो यार, यू नो सबसे पहले सुप्रीमली इम्पोर्टेंट अगर कोई इस पूरी दुनिया में है तो वो आप खुद हैं. ऑफ कोर्स डोंट ओवर स्पेंड एनीथिंग, नॉट इवन मनी, नॉट इवन टाइम, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार अपने शौक के लिए जिंदगी कौन नहीं जीता. नहीं, और ये जो गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस वर्ड शौक, इज कि आप समझ गए होंगे, नॉट SHOCK, कला फिल्म से ये मैं आपके लिए गाना लेकर आई हूँ. और जिस तरीके से मैंने ये पढ़ा कि 20 मिनट में ये गाना बन गया था और इस पे कोई रीवर्क नहीं आया था, तो जिसने ये लिखा है वरुण ग्रोवर, उन्होंने ऐसा कहा कि यार अन्विता दत्त जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, वो खुद भी एक लिरिसिस्ट हैं और वो समझती हैं कि कैसे यू नो गानों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए. एना मित्रिवेदी जो कि एक मास्टर हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, तो वो सब जब यू नो एक साथ इकट्ठे होते हैं ना तो ऐसे गाने निकल के आते हैं शौक. इट इज अ ब्यूटिफुल डेप्थ वाला गाना, सुनो इसको, मैं जल्दी से वापस आती हूँ आपके पास. मिर्ची कैफे सुन रहे हो आप मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. स्वानंद किरकिरे, शाहिद मालिया, सुनो इसको. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

6 decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

0: आरडी संधू ने जो गाना गाया हो, बी प्राक ने कंपोज किया हो, जानी ने लिखा हो, जानी वो गाना अच्छा ही होगा ना। कितना अमेजिंग लगता है मुझे ये गाना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे इंटेंस डेप्थ वाले गाने मैं आपके लिए आज इस शो पर लेकर आई हूँ।
1: मिर्ची कैफे,
0: मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ। एंड थैंक यू सो मच जो आप मुझे सब मैसेजेस करते हो, डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, गाने सजेस्ट करते हो, मुझे बताते हो कि आपको शो कैसा लगता है। आई लव लिसनिंग टू ऑल दोज मैसेजेस, एक्चुअली रीडिंग, हाँ वॉइस नोट्स भी आते हैं कभी कभी मुझे। लेकिन मैं आपको जो बताने लगी हूँ ना अभी, वो बात आप गौर से सुनना और याद रखना, ठीक है? बिकॉज सर्टेन टाइम्स इट हैपेंस कि हम इस बारे में सोचते नहीं है, लेकिन अगर सोचोगे तो सोचोगे कि क्यों नहीं सोचा पहले। आप अपने आप को ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में रेपिटेटिवली पाओगे, क्योंकि हीलिंग जो होती है वो सर्कल्स में होती है और लाइंस में नहीं होती। आप उन जगहों पर, उन सिचुएशंस में, उन फेजेस में दोबारा लौटाए जाओगे। यूनिवर्स करती है ये काम, बट एवरी टाइम विद न्यू आईज एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स। तभी तो आपको पता चलेगा कि यू नो ऐसे सेम सिचुएशन आप पहले फेस कर चुके थे, जहाँ पे आपने कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया था और अब आप अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। एंड देन द यूनिवर्स डिसाइड्स कि हाँ, अब इस इंसान को ये वाली लर्निंग मिल चुकी है, अब दोबारा हम इस सर्कल को इसके साथ रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने ये कभी फील किया है तो प्लीज राइट टू मी, हाँ, और ये जरूर बताना कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या एक्सपीरियंस होता है जिसको आप हमेशा याद रखते हो, ठीक है? नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देती हूँ, 7045983983 व्हाट्सएप नंबर है, और paruls.world आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू। और अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बाबुल सुप्रियो की आवाज में, इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग। जो ऐसे हम प्यार में होते हैं ना, एक तरफा प्यार में, और हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि यार सामने वाला शायद हमें भी पसंद करे कभी, वो वाले थॉट का गाना है ये। और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द ईयर 2003, अपनी टाइम मशीन से जाकर आपके लिए आज ये गाना लेकर आई हूँ मैं। सुनो इस गाने को, थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे। आप सुन रहे हो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: की आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
1: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
2: वो अपनी आंखों में खुद ही खोता सिवाय सिवाय किस जुनून के।
1: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आज आई एम डैम श्योर कि 90s वाले जितने भी लोग हैं मिलेनियल्स, उनको ये शो सुनकर बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे गाने चुन चुन के लिए लेकर आई थी जो आपने यू नो उस एरा में सुने थे जब आप बड़े हो रहे थे. एंड नाउ मिर्ची कैफे पर आपके लिए ऐसे गाने लेकर आना मेरा काम है.
1: मिर्ची कैफे.
0: नाम है मेरा पारुल. जय वालिया ने ये गाना गाया था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस गाने में फीचर हुए थे शाहिद कपूर. आर्यंस का ये गाना कहलाता था. और आपने अगर नहीं देखा है ना, और अगर आप शाहिद कपूर से प्यार करते हैं, प्लीज जाके वीडियो इस गाने का देखो, और उनके चेहरे पर जो इतनी घनघोर मासूमियत है शाहिद कपूर की, बिकॉज ही वॉज जस्ट ऐसे छोटू सा लड़का था जब ये गाना आया था. एक एल्बम में उनको फीचर किया गया था. व्हाट डेज ना यार. वेल, दिन वक्त लम्हा डेज ऐसे ही बीतते चले जाते हैं, और हम चीजों को, मेमोरीज को, मोमेंट्स को याद करते रहते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है. और मेरा काम है उन सब मोमेंट्स को आपके सामने लेकर आना, और बातचीत करना, और गाने लेकर आना आपके लिए मेरे शो पर, जिसका नाम है मिर्ची कैफे. अगला गाना नीरज श्रीधर की आवाज में हल्के हल्के छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, बिकॉज यस, वक्त हो गया है इस एपिसोड के खत्म होने का और मेरा जाने का, जिससे कि मैं दोबारा वापस आ सकूं बहुत जल्दी से. आपको मैं अपना इंस्टाग्राम बता चुकी हूं और अपना नंबर बता चुकी हूं. प्लीज डू कनेक्ट विथ मी. और जाते जाते एक थॉट के साथ छोड़ के जाना चाहती हूं कि अगर आप भी वो इंसान है जो बहुत सारे यू नो इंस्टाग्राम पे चीजें सेव करते रहते हो कि एक दिन जरूर देखोगे, बहुत सारे ऐसे कपड़े रखे रहते हो अपनी वार्डरोब में कि एक दिन जरूर पहनोगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को याद करते हो लेकिन कॉल नहीं करते हो ये सोच के कि एक दिन जरूर करोगे, प्लीज आज उस दिन को वो एक दिन मानो ना, करो ना वो सब जो आपको करना है. इस थॉट के साथ मैं आपको आज छोड़ के जाना चाहती हूँ. मिर्ची कैफे इज द शो. नाम है मेरा पारुल. बहुत सारा अपनों का और अपना ख्याल रखो, और सुनते रहो मिर्ची, बिकॉज इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और चलिए आज के इस महफिल की शुरुआत करी जाए एक रियलिटी चेक के साथ। जी बिल्कुल, मुईन एहसन जज्बी साहब का शेर सुनाता हूँ आपको। कहते हैं कि मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, मुख्तसर मतलब कंसाइज में, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। कितनी डाइकॉटमी हो जाती है ना, सुकून के पीछे दौड़ते रहते हैं और सुकून कभी नहीं मिलता। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ, बिकॉज यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis bana, murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तुम मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, और आइए
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: अब आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के शायर से, और रूबरू में आज हम आपका तारुफ कराते हैं अख्तारुल ईमान साहब से। बिजनौर में इनका जन्म हुआ और ज्यादातर जीवन इन्होंने मुंबई में फिल्मों में डायलॉग राइटिंग करते हुए बिताया। नज्म लिखने के बड़े शौकीन थे और इनकी एक नज्म है जो मेरी बड़ी पसंदीदा है, नाम है तब्दीली। कहते थे कि इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले और आवाज दे ओबे ओ सर फिरे। दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं गिर्दो पेश और माहौल को भूल कर गालियां दें, हंसे, हाथापाई करें, पास के पेड़ की छांव में बैठकर घंटों एक दूसरे की सुने और कहें, और इस नेक रूहों के बाजार में मेरी एक कीमती बेबहा जिंदगी एक दिन के लिए अपना रुख मोड़ ले। वाजिबा तमीज और तहजीब की इस दुनिया में भी एक इंसान कितना अकेला महसूस कर सकता है, ये बयां करती है ये नज्म। अगले नगमे की ओर आगे बढ़ते हैं मिर्ची महफिल पर, आपके ताशी है आपके साथ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आदाब मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा ही उम्दा शेर मिला मुझे। ये जो डिबेट्स होते हैं ना, कई बार आप न्यूज चैनल्स पे कुछ देखते हैं जिनमें बड़ा चीखम चिल्ली हो रही होती है, उसके ऊपर बड़ा फिट बैठता है ये शेर। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों की। कितनी सही बात है, जो बहस कर रहे हैं तूफानों की साहिल पे बैठ के, किनारे पे बैठ के, उनको क्या मतलब है कि भाई जो तूफान में, जो पानी में है सच में, उसके क्या हालात हैं, उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों की। कितनी सटीक बात कह दी है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। किसी और को फिक्र हो ना हो, हमें है दोस्त, बात करें हमसे आकर। हमारे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
4: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे, तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
5: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
4: जैसे
5: तो
4: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केटेड इन हर डेली लाइफ, और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
3: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: अब जब इतनी खूबसूरत गजलें नगमे आसपास बजते हैं तो हमारा भी मन कर जाता है यार।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ ऑब्वियसली। और यार दोस्त, मेरा ना बड़े ही देर से एक गाना गाने का बड़ा मन कर रहा है जो कि मेरे जहन में अटका हुआ है। और ये जो गाना है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे बंगाल का जो बाउल म्यूजिक है ना उससे इंस्पायर्ड है ये। अब हमारे अमित त्रिवेदी साहब ने इतनी खूबसूरती से उस म्यूजिक से इंस्पायर होके इतना प्यारा ये गाना बना दिया है कि अब ज्यादा समय व्यर्थ करे बिना

हा, स्वानंद किरकिरे साहब की आवाज है इस गाने में और कविताएं, शेर और शायरी सब कुछ मिलेगी यहाँ पे सिर्फ मिर्ची महफिल पर. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और किसी भी चीज को शख्स को भूल जाने के साथ दिक्कत ये है ना कि वो कभी भी वापस याद आ सकता है। हाँ जी, शुरुआत तो हर शख्स अदीम हाशमी साहब के इस शेर से ही करता है, इस शेर की तरह ही करता है कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। लेकिन फिर भूलना इतना आसान कहाँ होता है। लास्ट में फिराक गोरखपुरी साहब का ये शेर सच हो जाता है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: कि आपको आज का किस्सा सुनाया जाए मिर्जा गालिब की जानिब से। किस्से का नाम जूतों की हिफाजत। हाँ जी, एक दिन जबकि आफताब गुरूब हो रहा था, सूरज ढल रहा था, सैयद सरदार मिर्जा गालिब से मिलने को आए। जब थोड़ी देर बाद वो जाने लगे तो मिर्जा साहिब खुद शम्मा लेकर फर्श के किनारे तक आए ताकि सैयद साहब अपना जूता रोशनी में देख कर पहन ले। उन्होंने कहा, खिबला आपने क्यों तकलीफ फरमाई, मैं जूता खुद ही पहन लेता। मिर्जा साहब बोले, मैं आपको जूता दिखाने को शम्मा नहीं लिया, बल्कि इसलिए लाया हूं कि कहीं आप मेरा जूता ना पहन जाए। मिर्जा गालिब का एक किस्सा एग्जाम्पल है दोस्त की उर्दू जबान केवल संजीदा बातों के लिए नहीं इस्तेमाल होती। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ और अहमद सलमान साहब की एक बड़ी प्यारी गजल हाथ लगी। और आजकल जब भी कुछ नया बढ़िया पढ़ता हूँ ना तो आपकी याद आ जाती है, तो सुनाना तो बनता है। लिखते हैं कि जो दिख रहा उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो दिख रहा उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समुंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। जिंदाबाद दोस्त। इतनी उम्दा गजल बहुत कम ही सुनने को मिलती है, लेकिन आप मेरा यकीन करें जब जब मिलेगी मुझे पढ़ने को मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ।

0: वन सच पार्टी जहाँ पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरिस पे मिले थे. तो आई रिमेंबर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर. सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये.
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड पोर्टल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि पलटे जाएं अपनी डायरी के सफे और करूं आपके नजर पिछले हफ्ते की एक एंट्री। एक लंबे वक्फे से टाइम पीरियड से किसी से उबरने की कोशिश कर रहा था और जैसे काले बादल छट जाते हैं ना कुछ वैसे ही अचानक से एक दिन खटाक से एकदम खत्म हो गया। उसकी याद भी नहीं आई। जब ये याद आया कि उसकी याद नहीं आई है तो जहन में नून मीम दानिश साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल गूंजी। कहते हैं कि तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता, उदास करती है अक्सर तुम्हारी याद मुझे, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता। गजल आगे भी है, नून मीम दानिश साहब को और पढ़िएगा मौका पाके, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ा उन्हें तो आप मिस करेंगे बहुत काम, उम्दा काम जिसे कहते हैं उर्दू अदब में। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग, मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अभी हाल में भारत के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हिंदी सेटायरिस्ट व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई साहब का जन्मदिन था तो मेरा मन किया कि आपको उनके लेखों के कुछ हिस्से सुनाऊं। एक हिस्सा ही अभी यहाँ पे प्रेजेंट कर पाऊंगा। क्लासिज्म के बारे में लिखते हुए हरिशंकर जी कहते हैं कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक अजीब जीव होता है। एक ओर उसमें उच्च वर्ग की आकांक्षा और दूसरी तरफ निम्न वर्ग की दीनता होती है। अहंकार और दीनता से मिलकर बना हुआ उसका व्यक्तित्व बड़ा विचित्र होता है। बड़े साहब के सामने दुम हिलाता है और चपरासी के सामने शेर बन जाता है। हरिशंकर परसाई साहब वॉज अ लेजेंड जिन्हें हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे सटल्टी के साथ ट्रीट किया जाता है साफ हो जाएगा दोस्त सारा कॉन्सेप्ट। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
2: Nahi, kaun baat kar raha
3: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ, मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा है?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे यार
3: बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल काम कर।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में अब वक्त है आपको आज के लव्ज से मुखातिब कराने का।
2: मिर्ची महफिल पे लव्ज आजकल।
1: और आपका ताशी आज जिस लव्ज की बात आपसे छेड़ रहा है वो है फरामोश। फरामोश का मतलब होता है भूला हुआ, फॉरगॉटन। आपने जिंदगी में हो सकता है इस लव्ज का इस्तेमाल किसी ऐसे सेंटेंस में देखा हो कि यार वो तो बड़ा एहसान फरामोश है, जो एहसान भूल जाए। जलील मानिकपुरी साहब के शेर से आप इस लफ्ज का शायरी में खूबसूरत इस्तेमाल देख सकते हैं। लिखते हैं कि बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए। आय हाय, कि जैसे आशिक ने वादा भुला दिया वैसे ही उस शख्स को भी भुला दिया। तो बस अब देखें, बात ही बात में एक नया लफ्ज आपके वोकैब में जुड़ चुका है, फरामोश। अब एक सेंटेंस में क्यों ना आप इसका इस्तेमाल करके हमें लिख भेजें फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अभी हाल का कुछ वक्त हुआ सपने बड़े जोर से आ रहे हैं मतलब इंटेंसिटी उनकी कुछ बढ़ सी गई है। मैंने ये देखा कि हमारे उर्दू अदब में भी किसी भी लिटरेरी कल्चर की तरह ख्वाबों का इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से किया गया है। सिराज लखनवी साहब जैसे लिखते हैं कि आंखें खुली तो जाग उठी हसरते तमाम, आंखें खुली तो जाग उठी हसरते तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। वाह जी वाह। तो उधर रजा अजीमाबादी साहब ख्वाब में आई जुल्फ से दिक्कत में, कहते हैं कि देखी थी एक रात तेरी जुल्फ ख्वाब में, देखी थी एक रात तेरी जुल्फ ख्वाब में, फिर जब तलक जिया मैं परेशान ही रहा। आए आए, आप भी ऐसा कोई पसंदीदा शेर जिसमें ख्वाब आता हो दो लाइनें ही सही भेज दे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट
2: no.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब
3: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ और अब वक्त हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले ऑब्वियसली आपको एक ताशी अनप्लग्ड नजर करना तो बनता ही है। और आज का जो ताशी अनप्लग्ड है वो बहादुरशाह जफर की गजल है एंड इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स। इट्स कॉल्ड बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। मिर्ची महफिल पर सिर्फ आपके लिए।

ऐसी ही और गजलों नगमों के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल हमारे गाना ऐप की पॉडकास्ट पर। हाँ जी, अगर आपकी किसी वजह से आज का शो मिस हो गया हो तो यू कैन कैच द शो देयर ऑल्सो। एंड फिलहाल तो मिर्ची के मजे लें। आपका ताशी था आपके साथ। मुझे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ढूंढ सकते हैं मिर्ची ताशी MIRCHITASHI से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: हाँ भाई, मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।